0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
4: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
6: बंद करो ना ढक्कन.
7: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
8: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
9: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे, आज समिया को खुद नहीं पता मेरा नाम, भूल जाते हैं. तो खैर, आप लोग आई होप कि खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, मूड आपका अच्छा होगा. और मुझे नहीं पता क्यों अच्छा होगा, लेकिन खैर, तो कोशिश खुद ही करनी पड़ती है अपने मूड को अच्छा रखने के लिए. किसी और ने तो आके अच्छा नहीं करना, बल्कि उल्टा मूड खराब भी कर देना है. खैर, सुबह अच्छे मूड के लिए जरूरी है कि आप अपनी सुबह का आगाज करें पॉजिटिव नोट से. कुरान शरीफ पढ़ें, और जब भी कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें, नमाज पढ़ें. आई होप कि आपने नमाज पढ़ ली होगी. तो हम आपको आज हम पढ़ रहे हैं सूरह इन्फितार का तर्जुमा. आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 9 से. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ऐ इंसान, नहीं, आयत नंबर 5 से. ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने कर्म वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया, जिसने तुझे पैदा किया फिर ठीक बनाया फिर एतदाल वाला किया, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया. हरगिज नहीं, बल्कि तुम इंसाफ होने को झुठलाते हो, और बेशक तुम पर जरूर कुछ नेगेबान मुकर्रर है. आप सुन रहे थे सूरह इन्फितार का तर्जुमा आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 10 तक. और हरगिज हमेशा हमें अल्लाह ताला पे ही भरोसा करना चाहिए हर चीज के लिए. उनके बंदे पे भरोसा करेंगे कि वो आपके काम बनाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता. और किसी भी चीज की, किसी भी इंसान की अल्लाह से ज्यादा अहमियत नहीं है, और डरना सिर्फ अल्लाह ताला से ही चाहिए. और राइट जी, और वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद आते हैं और आपको बताते हैं कि आज का टॉपिक क्या है. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.

0: 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
3: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
0: And
5: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा.
0: And
6: Sweep V Clean, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL. And

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और वक्त हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आप एक ऐसी चीज है जो हम अक्सर लोग बहुत करते हैं, हम माने या ना माने, और वो ये है कि आप मतलब हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं हर काम करने से पहले, हर काम करने के बाद इतना सोच सोच के हमने अपने आप को परेशान कर लिया है, वो भी लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमारी ये बात उसको तो बुरी नहीं लग जाएगी, हमारी वो बात उसको तो बुरी नहीं लग जाएगी, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। हम अल्लाह के बारे में शायद इतना नहीं सोचते, अल्लाह को क्या अच्छा लगता है, अल्लाह को कैसी बातें पसंद हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो रिस्क हलाल है या नहीं है, क्या हम अपने रवैये से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे। तो ये सारी बातें हम नहीं सोचते, हम बस ये सोचते हैं कि बस यार उसको अच्छा लगे बुरा लगे, उसको हम क्या कहते हैं बहुत मक्खन लगा ले ताकि वो हमारा फायदा करे, भले वो कितना ही जहर इंसान हो, अपने फायदे की लोग बातें सोचते हैं हर वक्त। और लेकिन फिर कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हैं, कुछ लोग इतना सोचते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाते। तो बस खैर, ये हमारा आज का टॉपिक है कि क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हैं जरूरत से ज्यादा, आर यू एन ओवर थिंकर। और आप लोगों के पैगामात मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं, मोहम्मद अली अंसारी और याया हमीद के मैसेजेस आ रहे हैं। और हमारे पास याया हमीद कहे, नो नेवर आई डोंट ओवर थिंक कॉज इट विल टेक यू टू डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग हर्ट योर ब्रेन, अच्छा या बुरा नेवर रिमेन फॉर एवर सो चिल। कितनी अच्छी बात की याया हमीद साहब ने कि भाई अच्छा हो या बुरा हो, जो भी वक्त होता है गुजर ही जाता है, आज अच्छा नहीं है तो ये गुजर जाएगा, अच्छा भी आएगा, क्योंकि जिंदगी एक साइकिल की तरह चलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और दिन रात का ये टाइम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बस अल्लाह ताला पे ज्यादा फोकस रखें और अपने मामलात बस ज्यादा, तो अल्लाह मालिक है, वही हम कर रहे होते हैं, अल्लाह मालिक है। लेकिन बहुत ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं होती, जो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। खैर, और मोहम्मद अली अंसारी कह रहे हैं, यस आई एम एन ओवर थिंकिंग पर्सन आज समिया। ओहो, वो हमें अटक सिटी से सुन रहे हैं, क्या बात है, मैं अटक, अटक में भी लोग मुझे सुन रहे हैं। हेलो अटक पीपल, हाउ आर यू, मौसम सुना है वहां का बड़ा अच्छा है, तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पे तो हम जो है ना वो गर्मी के अंदर हमारा बुरा हाल हो गया है, हब्स के अंदर इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, ऐसा लग रहा है वापस से एसी वापस से हमें ऑन करने। अच्छा जी, और इसके अलावा कह रहे हैं कि आज समिया जी, डीप थिंकिंग हो या ओवर थिंकिंग एज पर मैं नुकसान देती है, क्योंकि थिंकिंग अगर लंबी या गहरी हो जाए तो नुकसान देती है और अक्सर इससे फैसले चेंज हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ज्यादा सोचने से इंसान के इरादे कमजोर हो जाते हैं, ये भी होता है। खैर, हमारी बातें चल रही हैं, आप बताएं कि आप क्या ज्यादा सोचते हैं या सोचते ही नहीं है बिल्कुल, तो हमें आप बताएं, हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया के इंस्टाग्राम पे। और एक और तरीका भी है दोस्तों कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर, और हम आपके लिए प्ले करेंगे अभी ये ट्रैक। आइए सुनते हैं।

0: सोचती हूँ. आप अभी गाना सुने थे थिंकिंग आउट लाउड के, वो गाने में थिंकिंग वो क्या था कि बस मैं ये कुछ लोग बोल बोल के सोचते हैं ऐसे कि मैं अच्छा मैं आप लोग अपने आप से बातें करते नहीं, मैं तो करती हूँ कि यार ये क्या कर लिया समझिया तुम क्या पागल हो. मैं अपने को बहुत बोलती हूँ, तुमसे भी बात करती हूँ और मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि मतलब आप तुम बहुत तमीज से अपने आप से बात करती हूँ. मैंने कहा तो और क्या बंदा क्या बोले, तू पागल है तू कितनी मतलब बेकार है, ऐसा तो नहीं बंदा बोल सकता है. अब बंदा बोल सकता तुमने क्या किया यार तुम पागल हो, तो इस तरीके से बंदा बात करते मैं तो करती हूँ अपने आप से बातें. और कुछ लोग वैसे बड़े ओवर नहीं कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है कि जो फैसला उन्होंने कर दिया वो तो बिल्कुल ही बेस्ट है. खासतौर पर बॉसेस का यही एटीट्यूड होता है कि हम बॉसेस का लीडर्स का जो भी पॉलिटिशियन, उनको लगता है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ सही काम किया है या वो सही फैसले करते हैं इसलिए वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं. आप किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं आपसे गलतियां होंगी, आप कोई अकड़े कुल नहीं है, ज्यादा होती हैं कम होती हैं. इसलिए इंसान को हमेशा हम्बल रहना चाहिए और सोचना चाहिए. लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों को ज्यादा सोचना चाहिए वो बिल्कुल नहीं सोचते और आवाम जो है वो बेचारी सोच विचार में पड़ी रहती है. जब भी कराची के लोग कभी निकल ही नहीं पाते, वो इतना सोचते रहते हैं हर चीज के बारे में, कोई फैसला ही नहीं कर पाते. आज तक कोई फैसला ही नहीं कर पाए कि अपने हक के लिए उन्हें कब आवाज उठानी है. वो बस सोचते हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ नौकरी पे जाते रहेंगे. तो आप भी नौकरी पे जाइए और कराची में जो भी हो रहा है मसले हो रहे हैं प्रोटेस्ट करने की आपको क्या जरूरत है. और आई होप कि हम भी किसी दिन जागें. और राइट, और आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं. और इकबाल हुसैन साहब का भी मैसेज आ गया है गुड मॉर्निंग का. थैंक यू इकबाल हुसैन साहब, आपको भी गुड मॉर्निंग. और आप लोग भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या नहीं सोचते या बिल्कुल भी नहीं सोचते, दिमाग को तकलीफ ही नहीं देते. तो आप हमें बताएं, मैसेज करें आजय समीहा के फेसबुक पेज पे या @AJSameeha इंस्टाग्राम पे. और एक और तरीका है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको भेज देंगे 36365 पर. और हम मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद.
1: इट्स 8:30 AM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL. HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: खालिस अज्जा भरोसे मंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
3: वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहीन नवीद है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जिस के शोबे से मुंसलिक हूँ. बाल गिरने के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि सिर्फ तेल या शैम्पू बदलने से मसला हल हो जाता है. हकीकत यह है कि बाल गिरने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है जैसे गजाई कमी, हार्मोन्स या मौसी अवामिल. अगर बाल गैर मामूली हद तक गिर रहे हों तो जिल्द और बालों के माहिर डॉक्टर से मशवरा करें. बरवक्त तशखीस ही दुरुस्त इलाज की बुनियाद है.
4: ये पैगाम एटको लेबोरेटरीज और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के तावन से नशर किया गया है.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
6: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
8: बंद करो ना ढक्कन.
9: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
13: This program is brought to you by
10: Higher का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: एंड स्वीपी क्लीन, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: एंड HBL फ्री रूम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। एंड
15: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
16: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
5: बंद करो ना ढक्कन.
6: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
3: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
8: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
9: This program is brought to you by
3: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
10: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
6: And Sweep V Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
11: And
12: Tufaan hai.
13: facebook.com/fm247365
14: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate.

0: Let's celebrate the journey.
1: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आजय समीहा और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. एनजीक ने मुझे वीडियो भेजी है कि वो गाना सुन रहा है आई लव द सॉन्ग एंड यू नो और वो ये गाना जब मूवी में चला था प्रिटी वुमन के अंदर तो वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी एंड आई होप यू एंजॉयिंग एंड थैंक यू दैट मेड माई डे एंड आई होप एंड आई डू प्रे के यू फाइंड समबडी हु इज एज नाइस एज यू आर. ओके जी और उसके अलावा हमारे पास और लोगों के भी पैगामात हैं. समीर खान कह रहे कि हाँ क्या कह रहे थे यस मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ. सब ही सोचते हैं यार ओवर थिंक कर करके अगर हमने इतना ज्यादा सोचा नहीं होता अपना बिजनेस ना शुरू कर लेते हम हैं और पता नहीं क्या कुछ हम जिंदगी में कर लेते. बस ये ज्यादा सोचने के चक्कर में जो है ना बस हम पीछे रह गए. अच्छा पेट्रोल पंप की वो बात कर रहे हैं कि सामने पेट्रोल पंप बंद है काफी हमारी न्यू कराची की तरफ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है. बकाया शहर की अपडेट जरूर दीजिए के फ्यूल पंप के हवाले से ताकि ट्रैवल आसानी हो लोगों के लिए. पहली बात है कराची के अंदर इंसान का अपना जाती फ्यूल पंप ही होना चाहिए या तो फिर वो गाड़ी ना रखे पैदल चले यही आसानियां वहां पे. अच्छा और दूसरा के एक और मसाइल में इजाफा न्यू कराची के लोगों के लिए हो रहा है और ये बेचारे इसमें भी लोगों के ना वो जो स्ट्राइक हुई उसमें भी वो कह रहे हैं आधे लोग कह रहे हैं हम स्ट्राइक करेंगे आधे लोग कह रहे हैं हम नहीं करेंगे. इससे भी ना इका नहीं है और रोजाना वो कह रहे रोजाना जो है ना पेट्रोल की प्राइस चेंज होगी गवर्नमेंट के लिए. सोचो हम ऐसे पूछेंगे अच्छा आज भाव क्या है भाई हाँ पेट्रोल नहीं हो गए टमाटर हो गए कि रोजाना कीमतें आपकी जो है ना उसकी चेंज होंगी. वेदर अपडेट की तरह ना आपको ये भी देना पड़ेगा आज है पेट्रोल की कीमत इतनी आज पेट्रोल की कीमत 312 आज पेट्रोल की कीमत 322 यही वो हम रोजाना ना यही करते रहेंगे पेट्रोल की. मैं आपको बता दूं कि आज पेट्रोल की कीमत है 327 और डीजल की कीमत है 375. तो ये है कि अगर आपके पास 327 रुपए से ज्यादा है तभी आप मोटरसाइकिल बाहर निकालें वरना घर में ही रहें. ऑलराइट और आखिर एक नीटर्स में बंदा कहाँ जाता है. ओके जी तो खैर ये कराची के आवाम नहीं निकलेंगे स्ट्राइक के लिए. वो निकल गए फ्यूल पंप वाले जो इतने पैसे कमाते हैं ऑलरेडी सही है जिनकी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि बेतहाशा बिजनेस है पेट्रोल पंप जिनका है. उन्होंने होटल तक खोले हुए बेकरियां खोली हुई हैं और एक आवाम आप मैं बता रही हूँ आप पेट्रोल 500 कर दें इसने नहीं निकलना उसने 500 में भी जो है ना वो ऑफिस जाना है क्योंकि इतना दम ही नहीं है हमारे अंदर कि हम किसी भी चीज के लिए एक होकर कभी अपने हक के लिए आवाज उठा लें. नहीं हमने नहीं उठाना और इसी बात का फायदा उठाती है गवर्नमेंट के इन लोगों ने कुछ नहीं बोलना ये चुपके चुप ही रहेंगे बेचारे खासतौर पर कराची वाले. खैर आप लोग क्या कर सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए गाना ही लगा सकती हूँ मैं अपने यही कर सकती हूँ आप लोगों के लिए. तो खैर अभी हमारा गाना है टॉपिक पे बिल्कुल सूट करता है और ये सारे ओवर थिंकर्स को मैं डेडिकेट कर रही हूँ. इसके अलावा हमें आप मैसेज कर सकते हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया और वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे कैसी बातें हो रही है FM 100 पे तो यहाँ पे ऐसी ही बातें होती हैं इस टाइम पे. तो हमें आप मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या आज समिया इंस्टाग्राम पे. आपने हमें ये बताना है कि क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं.

0: FM 100 traffic update.
1: मैं हूं फारूक हजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक हबीब बैंक चौरंगी से वो ट्रैफिक जो माड़ीपुर रोड की जानिब जा रहा है उसके ऊपर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है और अतराफ में ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। इसके साथ साथ FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक गरीबाबाद से वो ट्रैफिक जो इस वक्त ईसा नगरी और वहां से स्टेडियम रोड की जानिब आ रहा है उस पर भी ट्रैफिक का दबाव है, लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह रहें ताकि बर वक्त अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

वो बेचारी सोचती ही रह गई कि वो बोल ही नहीं पाई। तो कुछ लोग इतना सोचते रहते हैं कि दिल की बात बोल ही नहीं पाते, किसी से प्यार हो जाए तो भी नहीं बोल पाते, किसी से नफरत हो जाए तो भी नहीं बोल पाते कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है, ये भी बोलना बहुत जरूरी है। सोचिए पॉलिटिशियंस वाले को बोलते हैं ये ठीक है, ये ठीक है, इनको लगता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कहती हूँ कि खुशफहमी जरा दूर हो जाए। और राइट, और आप लोगों के पैगाम हैं। अकबाल हुसैन कह रहे अस्सलाम वालेकुम, समिया जी कहते हैं कि सोच इंसान को जल्द बूढ़ा कर देती है, और सोच इंसान के अपने बस में नहीं होती, लेकिन जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करना सीख लेता है तो फिर वो कोशिश करता है आगे बढ़ने की, नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। पॉजिटिव सोचें और अपने दिमाग को सोचों का कबाड़ खाना ना बनाएं। जज़ाकअल्लाह, वाह भाई वाह। पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम इकबाल हुसैन। ओके जी, और नसीम पटेल जी आप कैसी हैं? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? आप तो ज्यादा नहीं सोचती, वैसे आप लोग बिल्कुल ज्यादा सोचे नहीं, और मुझे आप लोग कुछ अच्छी बहुत दिनों से यार कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं आ रहा है। हकीम शकील भी गायब है, कुछ खाने की चीज भी आप लोग नहीं भेज रहे, कितने गायब है मेरे प्यारे लिसनर्स जो खाने भेजते थे, बहुत दिन हो गया यार, और तो आप लोग सोचे नहीं आगे बढ़े। और राइट, तो दिल की बात जो है कह देनी चाहिए, और जो लोग दिल की बात कह देते हैं 50-50% चांस होता है कि उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। और तो जो लोग सोचते ही रह जाते हैं, मेरे कितने दोस्त हैं बेचारे सोचते ही रह गए, लड़की की शादी हो गई और मतलब वो सोच में ही रह गए, वो दिल की बात कह ही नहीं पाए। और मैं आपको बता दूं कि लड़कियों को अनश्योर लड़के तो वैसे भी नहीं पसंद, क्योंकि वो तो मेरे बारे में श्योर ही नहीं है, वो तो बोल ही नहीं पाया मुझसे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब ज्यादा आराम से कॉन्फिडेंटली बोल देता है वो बाजी ले जाता है, और जो वाकई में सच्चा प्यार करता है वो बोल ही नहीं पाता, इस चक्कर में रह जाता है। तो इसलिए ना हिम्मत करें, और क्या शेर तक हिम्मत करे खुदा, ऐसे कोई बात था ये है ना कुछ वसीस अहमद, क्या था वो लाइन बताएं जरा मुझे। ओके, और अभी हम वाइट साइंस का टाइम है, तो वाइट साइंस के गाना भी यही था कि मैं वो सोचते ही रहा, वो बोल ही नहीं पाए, और लड़की ने ही बोल दिया कि यार वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो बात कही वो तो मैं भी मेरे दिल में भी थी, लेकिन पता नहीं मैं चुप रहा। तो ज्यादा चुप रहने का कोई फायदा नहीं होता। आइए सुनते हैं।

0: तो आप बिल्कुल भी चुप मत रहें, आप हमें मैसेज करें और बताएं कि आप ज्यादा सोचते हैं या नहीं, हमें मैसेज करके आप बता सकते हैं और हमें खुशी होगी आपकी राय जानकर। आप मुझे किस तरीके से मैसेज करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप मुझे मैसेज करें मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे, आरजे समीहा नाम है मेरा। और एक तीसरा तरीका है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एचआई स्पेस आपका नाम आपका पैगाम और उसको भेज देंगे 3636 पर। हम मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
1: इट्स 9:30 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
6: बंद करो ना ढक्कन।
7: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी परसेंट इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। एंड
11: तूफान है
12: facebook.com/fm247365 fm247365

जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं। मोहम्मद अली अंसारी कह रहे हैं, आधे समय जी मेरे सामने मेरी पसंद का खाना आ जाए तो मैं फिर सोचता नहीं हूँ, शुरू हो जाता हूँ। बिल्कुल मैं भी यही करती हूँ, और करना भी यही चाहिए। खाने का क्या कसूर है? और आबिद अमीन साहब का भी यही ख्याल होगा। आबिद अमीन कितनी भी नाराजगी हो, पसंद खाने से कौन नाराज होता है? मुझे समझ दिन सबसे पहले लोग खाना छोड़ते हैं, मैं कहती हूँ भाई खाने ने क्या कसूर किया है। मैं तो कहती हूँ अच्छा थोड़ी देर नाराज रहो ना, बंदा ज्यादा अच्छे खाने को मिलता है। तो बंदा कहते बंदे को चाहिए नाराज ही रहे, आप जितना नाराज होंगे ना अच्छा खाना बनाएंगी बीवी, खराब भी बना सकते हैं जब बीवी नाराज हो, ऐसी क्या बात हो गई। और तो फिर बड़ी अच्छा मैं आपको बताऊं कि खाने के भी एक तरीके होते हैं। गरीब लोग जो होते हैं ना, मैं आपको गुर्बत की निशानियां बताऊं, गरीब लोग होते हैं वो क्या होता है, जैसे उनका खाना बस खुला, जैसे शादी ब्याह में या वैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स वो मुफ्त में बिरयानी भेजो, जलसों में जाने को तैयार हो जाते हैं बिरयानी के पीछे। ऐसा बड़ा ट्रेंड है खासतौर पर सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर के जी बिरयानी पे लोग जलसों पर जा रहे होते हैं कि जी बिरयानी मिलेगी फ्री। तो वो फिर जब खाना खुलता है उसमें तो ऐसे जी धक्के मुक्के और एक दूसरे को पंजाब में तो चढ़ ही जाएंगे उसके ऊपर बिरयानी के चक्कर में। बिरयानी के चक्कर में वो किसी का लिहाज नहीं करेंगे, ऐसे अटैक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सारी गुर्बत की निशानी है। फौरन आप पता, भले आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो और आप शादियों में बिल्कुल इसी तरह खाना खाए, जिंदगी में आपको पहले खाना ना मिला, और अगर आप भर भर के प्लेटें ले रहे हैं और जाया कर रहे हैं, ये बिल्कुल निशानी है कि आप एक गरीब इंसान है, आपका ताल्लुक एक गरीब घर से। क्योंकि अमीर लोग पहली बात है कम कम निकालते हैं और बहुत तरीके से खाते हैं। असल में अमीर लोग घर में ही खाते हैं, छुपके कमरा बंद करके और नेटफ्लिक्स ऑन करके फिर वो पागलों की तरह खाते हैं, लेकिन दूसरों के सामने वो बहुत तरीके से सलीके से खाना खाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पता ना चले कि आप असल में कितने गरीब हैं, तो तरीके से खाया करें बाहर जाके। ये नहीं कि अटैक कर दिया जी, यहां पर तो कोई तरीका ही नहीं है लिटरली, और थोड़ा थोड़ा खाएं, तरीके से खाएं, गिराएं नहीं खाना। और तो ये मैंने आपको पब्लिक सर्विस मैसेज दी। और गुटखा तो बिल्कुल ही ना खाएं आप, कितने अगेन बोलूंगा, आप कपड़े जितने भी अच्छे पहन लें, गाड़ी जितनी अच्छी हो, अगर आपके मुंह आपके दांत बिल्कुल वो अजीब से डार्क ब्राउन हो रहे हैं गुटखा मावा खाने की वजह से, तो ये भी गुर्बत की निशानी है। क्योंकि अमीर लोग ये चीजें नहीं खाते, वो ज्यादा महंगे नशे करते हैं। ये क्या गंदी चीजें, सीरियसली। तो प्लीज अपने और अपने घर वालों को इन नशे से बचाएं। और मैंने एक दफा एक बंदा मुझे मिला था इनवाइव में, तो मैंने कहा, कहता है कि जी मैं वो ना वो बिल्कुल दरवाजा खोल के इसने ना थूकना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा आपकी बीवी ने आपको अभी तक घर से नहीं निकाला कि आप इतनी गंदी चीज खा रहे हैं? तो बीवियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने शौहरों को सिखाएंगे, उन्होंने खुद तो नहीं सीखना, ये खुद ही कुछ आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आप देखें ना बीवियां इतनी मेहनत करती हैं, खवातीन इस बारे में बहुत मेहनत करती है कहीं से उनकी गुर्बत आया ना हो जाए। वो अपनी उस सहेली से मांग के जोड़ा पहन लेंगी शादी में, महंगे बैग्स रखती हैं, और शौहर को देखो शौहर ने मुंह खोलने, अक्सर शौहर को छुपा देती, नहीं नहीं मेरे साथ तो है ही नहीं, और उनको बोलेंगे वो आ तुम बताना तुम बाद में आना, तो वो शौहरों को ऐसा ऐसे शौहर ना बने कि बीवियां छुपाती रहें। और एक और मैं खवातीन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज जब आपके शौहर बाहर निकले उनको मेक श्योर करें कि वो नहा के निकले, और डिओड्रेंट और रोल ऑन आप ही खरीद के ले आए, क्योंकि इन लोगों को तो पता भी नहीं कि डिओड्रेंट और रोल ऑन क्या है। क्योंकि इससे पहले वाली जनरेशन की अम्माओं को भी नहीं पता था कि डिओड्रेंट और रोल ऑन क्या होता है और इसकी अशद जरूरत है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके हस्बैंड जब घर से बाहर निकले इन्होंने नहा के निकले, डिओड्रेंट और रोल ऑन लगाया हुआ हो, यह बहुत जरूरी है, और दांत इनके साफ हो ताकि ऑफिस में इनकी तरक्की हो। इनकी तरक्की आपके हाथ में है। पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम आजी समिया। तालियां, हफ्ते ने खुद ही तालियां बजानी पड़ती है। मुझे पता है आप लोग बजा रहे होंगे लेकिन मुझे आवाज सुनी आ रही। खैर बातें बहुत हो गई हैं, सुना जाए ये गाना रोमांटिक, और ये गाना मुझे साहिल समुंदर की याद दिला देता है। पता नहीं मिल जाता, मैं साहिल समुंदर में चली गई हूँ और वहां कश्तियां चली गई हैं। तो खैर सुनते हैं सजाद अली की आवाज में, पानी की चादरों में।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से. पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं. ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता. याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन OTP की तस्दीक या मखसूस USSD को डायल करना लाजिम होता है. याद रखें, PTA टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता. अगर आपने ना तो OTP शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है, तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए. अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं. ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा. अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो, तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं. शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम,
6: شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ڈی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ڈی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ڈی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 247-365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
2: नाजरीन, ताज़ातरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
3: बंद करो ना ढक्कन.
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

ऑल राइट, तो आज अगर किसी की सालगिरह है तो भाई हमारी जानिब से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, बिकॉज टुडे इज 23rd of July, तो भाई आज जुलाई की 23 तारीख है और अगर ये दिन किसी के लिए खास है तो जी हमारी जानिब से आपको बहुत मुबारक हो आपका ये खास दिन। इसी के साथ साथ आज कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो भाई आज नेशनल वेनेला आइसक्रीम डे मनाया जा रहा है, यानी कि वेनेला आइसक्रीम का डे। अच्छा, वेनेला आइसक्रीम की बस एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दिस आइसक्रीम इज सो गुड एंड सो रिफ्रेशिंग। ये वो आइसक्रीम है जो कि बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई बड़े शौक से खाता है। तो ये एक ऐसा फ्लेवर है जो कि हर चीज के साथ एक तो एडजस्ट भी हो जाता है, और अगर आपको आपके पसंद का फ्लेवर ना मिले जो कि चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, देन लॉट्स ऑफ फ्लेवर्स, उसमें से अगर आपको वेनेला मिल जाए ना तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि वेनेला का एक बड़ा मजे का टेस्ट होता है जो कि हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है और वो टेस्ट जो हम सबको बड़ा पसंद भी होता है। तो भाई आज नेशनल वेनेला आइसक्रीम डे मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ ऐसा लग रहा है मुझे आज ना वेनेला आइसक्रीम के साथ की कॉम्बिनेशन का भी दिन मनाया जा रहा है। आज स्प्रिंकल्स डेज भी है, वो स्प्रिंकल्स जो कि आप अपनी आइसक्रीम पर, डोनट्स पर या अक्सर औकात कुछ मीठे पे जो है वो टॉप करके खा रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ आज पीनट बटर एंड कोकोनट डे भी मनाया जा रहा है। और ये सारी चीजों को मुझे लग रहा है कि अगर आप वेनेला आइसक्रीम के ऊपर डालकर खाएं तो भाई वेनेला आइसक्रीम का मजा जो है ना वो दोबाला हो जाएगा। पीनट बटर एंड कोकोनट, पीनट बटर एंड चॉकलेट डे। ओके जी, पीनट बटर भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे है, लोग बड़े शौक से उसे खा रहे हैं अपनी ब्रेड पर लगाकर, या फिर दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एंड नाइस ऑल्सो, ये थोड़ा हेल्दी भी है और लोगों को पसंद भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पीनट बटर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ वेनेला आइसक्रीम के ऊपर टॉप करके खाना तो मुझे लग रहा है कि वेनेला आइसक्रीम का मजा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो आज मैं ऐसी जब भी पढ़ रही थी दिन तो मैंने कहा कि सारे दिन लग रहा है कि आपस में एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, और मौसम भी थोड़ा गर्म है तो आइसक्रीम खाना तो भाई बनती है, तो आप लोग जरूर आइसक्रीम खाएं, लेकिन ख्याल रखें अगर आपका गला वाला खराब है तो प्लीज फिर मत खाएगा, लेकिन वैसे आप खा सकते हैं बिल्कुल, और इसके कॉम्बिनेशन के साथ अगर खाएंगे तो आपको और मजे की लगेगी। तो क्या आपको आइसक्रीम पसंद है या नहीं ये भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आइसक्रीम भी सब हंसी खुशी खा ही लेते हैं। तो आपको आइसक्रीम कितनी पसंद है हमें जरूर बताएं, और इसे बताने के लिए भी आपने वही करना है, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, की ट्राई लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। चलते हैं एक अदर ट्रैक के जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

Yes, my friend. So I am back. Obviously, I have to be there. आप लोगों के साथ हम मौजूद होते हैं 12 से 2 के दरमियान. तो जी हाँ, बिल्कुल हम आपके साथ मौजूद हैं और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है. और भाई रशीद खान का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहते हैं आई एम गुड, ऑफिस से सुन रहे हैं. कह रहे हैं दिन भी अच्छा गुजर रहा है, आपकी आवाज चेंज है, आपके गले और फीवर के नजले के लिए ओ हो बहुत सारी दवाएं सजेशन के साथ. कहते हैं सुबह शाम विद ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा इनकी लंच मैच क्या है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा. मैंगो चिया, आई डोंट नो व्हाट इज इट. अगर आप सुन रहे हैं रशीद खान तो हम जरूर कंफर्म करके बताएगा कि आपके लंच में क्या है. पूछते हैं आपके लंच में क्या है, मेरे लंच में आज क्या है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आज मेरे लंच में दाल चावल है. कहते हैं कि आइसक्रीम पसंद है वेनेला, पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा. रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी. ओके जी, सो इंशाल्लाह जरूर हम आपकी पसंद के ट्रैक को शामिल करेंगे. और इसी के साथ साथ हमारे पास भी एक और मैसेज है, कहते हैं आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. वैसे मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है, चॉकलेट एक मेरा पसंदीदा है, लेकिन चॉकलेट में भी ना वो एक जो एक सॉल्टेड चॉकलेट होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, या रोस्टेड आलमंड बहुत मुझे पसंद है. और रोस्टेड आलमंड बल्कि मेरा चॉकलेट से भी ज्यादा फेवरेट है, तो वो मेरा एक बड़ा ही फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर है दैट आई रियली लाइक टू हैव. और मजे की बात क्या है कि ये जो कुछ फ्लेवर्स है ना, ये आपको हर जगह मिलेंगे, चॉकलेट, वेनिला, मैंगो. मैंगो का सीजन है तो बहुत सारी जगहों पर सीजनल मैंगो आइसक्रीम मिलती है, वो बहुत मजे की होती है क्योंकि वो एक्चुअली में उसमें लग रहा होता है कि आपको ना मैंगो का फ्लेवर आ रहा है. पर ये भी वो होता है कि चंद मुकामात पर आप ऐसी आइसक्रीम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन वैसे मेरे ये ही फ्लेवर्स हैं. वैसे मैं कभी चॉकलेट के अलावा कुछ ट्राई नहीं करती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं, अब अलग अलग आइसक्रीम्स को ट्राई करना चाहिए. और उसी के साथ साथ ना मुझे कोकोनट आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक है, जो मैंने कभी खाई नहीं है, लेकिन मैंने उसकी तारीफ बड़ी सुनी है कि कोकोनट आइसक्रीम बहुत मजे की होती है. सो माई नेक्स्ट प्लान इज दैट कि मैं कोकोनट आइसक्रीम खाऊंगी और उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी. लेकिन फिलहाल आई रियली वॉन्टेड टू हैव कोकोनट आइसक्रीम. चलते हैं सिद्धार्थ अली की आवाज की जाने बढ़ाते हैं वहां पर ट्रैक के बाद. आपकी पसंद की आइसक्रीम कौन सी है हमें जरूर बताएं.

0: 6:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.
1: Don't miss out.
2: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Aa chuki hoon wapas aur aap logon se guftugu ka silsila hamara jari hai. To ji, kya hal hawal hai aapke? Hame zarur bataye kaisa guzar raha hai aap sabka din. Agar aaj ka din aapke liye khaas hai to ye bhi hame zarur bataye taaki hum aapko aaj ke din ki mubarakbad dein. For some reason, kisi wajah se ho sakta hai ki aaj ka din aapke liye khaas ho, और ये भी हो सकता है कि किसी वजह से आज का दिन आपके लिए खास ना भी हो. तो ये सब तो भाई जिंदगी में चलता रहता है. तो क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है सवाले से भी हम तक आगाही जरूर फराम करें. और प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल हुए हैं तो ऑब्वियसली एक अदर ट्रैक करेंगे, आपके नाम और गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे. लेकिन उससे पहले एक अदर ट्रैक, एंड देन वी विल बी राइट बैक.

0: तो भाई आपके लंच में क्या मौजूद है, मैसेजेस भी हमारे पास आ चुके हैं, हमें मैसेज करते हैं और ये एक दो मैसेज जो कि अपना नाम नहीं लिखते, लेकिन कोई बात नहीं जी, क्यों नहीं लिखते ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि अपना नाम हमें नहीं बताते, लेकिन अगर अपना नाम बताएंगे तो हम आपका नाम लेकर आपके लंच को शामिल करेंगे। सो आई होप कि बाकी मैसेजेस अपना नाम जरूर मेंशन करेंगे। कहते हैं आपके लंच में मटर कीमा है, ओके, वैसे मटर का तो सीजन नहीं है, लेकिन मटर जो है ना वो खवातीन इतने ज्यादा स्टॉकिंग कर लेती हैं कि पूरा साल जो है वो मटर के मजे लेने के लिए, और इसी के साथ साथ अब तो फ्रोजन भी अवेलेबिलिटी है आपके पास, क्या फ्रोजन मटर जो है वो ले लें, ठीक है जी। इनके लंच में तो कीमा मटर है। उसी के साथ साथ हमें हफ्सा मैसेज करती हैं, हफ्सा कहती हैं आप ही लंच में मिक्स सब्जी है और साथ रोटी भी है, वेरी नाइस। अगर मुझे याद आया आसिया ने कल हमें अपने लंच में बताया था कि जी मेरे लंच में बिरयानी है लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुई, तो आसिया आपने उसके बाद हमें बताया नहीं कि आपका लंच तैयार हो गया था या नहीं हुआ था। और कल हमारे पास एक और मैसेज भी आया था जिन्होंने कहा था कि अभी मेरा लंच बना नहीं है, बनने वाला है, तो मैंने उनसे कहा था कि जी जो भी बनने वाला है आप हमें एटलीस्ट बताएं, लेकिन इन्होंने सस्पेंस रखा कि जब तक बनेगा नहीं लंच तब तक हम बताएंगे नहीं, और फिर उन्होंने इतना सस्पेंस रखा कि लंच बनने के बाद भी उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया। सो दैट इज सो फनी। तो भाई लंच क्या है जरूर हमसे शेयर करें। हम तो फिलहाल ब्रेक की जानब जा रहे हैं, वापस ट्रैक के साथ आ रहे हैं, जब तक आप अपने लंच की जरा मालूमात हासिल करें और हमसे जरूर शेयर करें।
1: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
3: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: ہمارے لسنرز کو بتائیں.
1: جی تو ہم پہلے کیلشیم کی کمی کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو بعض دفعہ کڈنی کی کمزوری کی وجہ سے, تو اگر ہمارے کڈنی پورے طور پر فنکشن نہ کر رہے ہوں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ کرونک کڈنی ڈیزیز ہمیں ڈیولپ ہو گئی ہے, تو ایسی صورت میں ہمارے باڈی کے اندر جو ایکٹیو فارم ہے وائٹامن ڈی کا, جو ہم اکثر ڈائٹ میں وائٹامن ڈی ہمیں جو جا رہا ہوتا ہے یا ہم سپلیمنٹس کی صورت میں جو وائٹامن ڈی لے رہے ہوتے ہیں, اس کو کڈنیز جو ہیں وہ پہلے لیور اس کو کنورٹ کرتا ہے ایک 25 ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی کے اندر, اور پھر کڈنی اس کو ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی جسے ہم اپنی ٹرمینالوجی میں 125 ڈائی ہائیڈروکسی وائٹامن ڈی کہتے ہیں اس کے اندر چینج کر دیتا ہے کڈنی. تو جب ہماری کڈنی پراپر فنکشن نہ کر رہا ہو تو یہ جو فنکشن ہوتا ہے یہ متاثر ہو جاتا ہے, یعنی ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی جو ایکچولی سیل کے لیول پہ جا کے کام کر رہی ہوتی ہے اور مین ہارمون ہے جو باڈی کو چاہیے ہوتا ہے کیلشیم کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کی جب کمی ہونے لگ جاتی ہے کڈنی بیماری کی وجہ سے تو پھر جسے کہنا چاہیے کہ اس میں ہڈیاں بھی کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہیں, ہماری باڈی پیراتھائرائڈ ہارمون کے لیولز کو بہت بڑھا دیتی ہے تاکہ وہ کیلشیم کو مینٹین کر سکے اور ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی کی پروڈکشن کو کرانے کے لیے. تو اس میں جو ہے وہ ہماری جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے, تو لوگوں کو پھر ایسی جب ان کی ایڈوانس کڈنی ڈیزیز ہو اس صورت میں لوگوں کو کیلشیم سپلیمنٹس بھی لینے ہوتے ہیں اور ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی بھی لینی ہوتی ہے. عام وائٹامن ڈی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس میں جو ایکٹیو وائٹامن ڈی ہے وہ بھی ہمیں لینا پڑتا ہے تاکہ باڈی کے اندر کیلشیم کا نظام جو ہے وہ مینٹین رہے. اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی اگر بہت ایکسیسو کوانٹیٹیز میں کیلشیم لے رہا ہے, بہت ایکسیسو کوانٹیٹیز کے اندر وائٹامن ڈی لے رہا ہے, بالکل اس صورت میں بھی اگر باڈی کے ہمارے کڈنیز کو میں زیادہ کیلشیم فلٹر ہونے لگے تو وہ بعض دفعہ کیلشیم کڈنی کے اندر ڈپوزٹ ہونے لگ جاتا ہے. اور دوسری صورت کے اندر جو ہے پتھری جسے کہنا چاہیے گردے کے اندر جو پتھری بنتی ہے کڈنی سٹونز ہیں وہ بھی جو ہے زیادہ بننے لگ جاتے ہیں, اور یہ کبھی کبھی جسے کہنا چاہیے کڈنی کے فنکشن کو متاثر کر جاتے ہیں. اور جو یورین کا جو فلو ہوتا ہے کڈنی سے لے کے ہمارے یورینری بلیڈر کے اندر, وہاں پر اگر اس کے راستے کے اندر اس کے فلو میں یہ کڈنی سٹون پھنس جائے اور آبسٹرکٹ کر لے تو ہمارے کڈنی سوج جاتے ہیں. اکثر ان بیماریوں کڈنی سٹونز میں پین ہوتا ہے لیکن سم ٹائمز کڈنی سٹون پین لیس بھی ہوتے ہیں, مریض کو پتہ نہیں چلتا اور اس بیچارے کا کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے.
0: صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آج کل لوگ جو ہیں یہ اپنا کیلشیم سپلیمنٹس بھی خود لے رہے ہوتے ہیں اور وائٹامن ڈی بھی اپنے حساب سے وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں, مطلب صرف ان دو کی بات نہیں کری, اور بھی جو ملٹی وائٹمنز ہوتے ہیں وہ سپلیمنٹس ہم اپنے حساب سے لے رہے ہوتے ہیں, ہم نے چلو سرچ کیا انٹرنیٹ پہ, چلو اچھا یہ سمٹم ہے یہ چل رہا ہے چلو خود سے لینا ہم نے شروع کر دیا, تو ڈاکٹر صاحب یہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم اس کا انٹیک رکھ بھی رہے ہیں آل دو کمی کو پورا کرنے کے لیے, تو یہ کس طریقے سے اس کو لینا چاہیے, پراپر کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے, کیونکہ سپلیمنٹس کے بھی ایک مخصوص ٹائمنگ ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو لیٹ نائٹ کھا رہے ہوتے ہیں جس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ باڈی کی اصل ابزاربشن جو ہے وہ ارلی مارننگ جس طریقے سے ہوتی ہے اور جو فائدہ آپ کو صبح چیزیں کھانے میں ہوگا وہ رات میں اتنا نہیں ہوگا. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے لسنرز کو تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کریں پلیز.
1: تو بہت امپورٹنٹ ہے کیلشیم انٹیک جو ہے وہ رائٹ اماؤنٹ کے اندر ہو.
0: صحیح.
1: اچھا ہماری ڈائٹ کے اندر بھی کیلشیم ہمیں مل جاتا ہے, جیسے کہنا چاہیے کہ ملک کے اندر اگر ہم تقریباً ایک کپ ملک لے رہے ہیں 240 ml 250 ml تو اس میں ہمیں اچھا خاصا 200 mg کیلشیم ہمیں مل جاتا ہے, پھر چیز کے اندر مختلف چیزوں کے اندر ہمیں کیلشیم مل جاتا ہے.
0: صحیح.
1: لیکن یہ کہ اگر ہماری ڈائٹ لو بھی ہے کیلشیم کے اندر تو تقریباً 300 اسٹل ہمیں مختلف غذاؤں سے ہماری باڈی کے اندر وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. تو جو ریکمینڈیشن ہے وہ تقریباً جیسے 800 to 1000 ینگ لوگوں کے اندر, اور ایلڈرلی لوگوں میں چونکہ ہڈیاں کمزور ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کو ہم تقریباً 1200 to 1500 mg کیلشیم لینا چاہیے ان کو. تو اگر کسی کی ڈائٹ سے اس کو تقریباً 600 کے قریب جا رہا ہے कैल्शियम 500-600 मिलीग्राम्स जा रहा है, और अगर वो एक कैल्शियम की टैबलेट ले लेते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे तकरीबन अक्सर सप्लीमेंट्स में 500 मिलीग्राम्स के करीब करीब कैल्शियम जा रहा होता है, तो वो काफी हो जाता है एक टैबलेट कैल्शियम की लेना। या एल्डरली लोगों में बाज दफा 2 टैबलेट्स तक की भी जरूरत पड़ सकती है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो फिर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और बाज दफा जैसे मैंने कहा कि अगर वो फिल्टर होकर किडनी में डिपोजिट होने लग जाए तो वो भी अच्छा नहीं है किडनीज के लिए। तो ये तो कैल्शियम के हवाले से बात हो गई। विटामिन डी का इंटेक जो है अगेन वो इम्पोर्टेंट है, और विटामिन डी बेसिकली सन से, मैं तो कहता हूं लोगों को भाई अल्लाह मियां ने विटामिन डी फ्री बनाया है, धूप इसके लिए है क्योंकि हमारी स्किन के अंदर एक ऑलरेडी एक जिसे कहना चाहिए केमिकल मौजूद है, जब इस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये एक्टिव फॉर्म ये विटामिन डी के अंदर चेंज हो जाता है, बाद में इसको लिवर किडनीज जो है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये एक फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सन एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो गया है, हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई हैं, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, ज्यादातर इनडोर हैं, आउटडोर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स ये दूसरी चीजें बहुत कम होती जा रही हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो इतनी जिस्म तक नहीं पहुंच पा रही, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक काफी हद तक एक एपिडेमिक सी एक सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी है। तो अगेन इसको विटामिन डी को अब हमें ना थोड़ा सा डाइट से और फिर सप्लीमेंट्स के जरिए से कवर करना चाहिए। अगेन डाइट के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी डाइट के अंदर अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट हमारी जो फैटी फिश है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी इन द डाइट, और बाज दफा बाज मशरूम्स में अगेन उसको खाने का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिवाज नहीं है।
0: Exactly.
1: और बाहर की दुनिया में बाज दफा मिल्क को डेयरी प्रोडक्ट्स को सप्लीमेंट किया जाता है, हमारे यहाँ वो भी वाइडली प्रैक्टिस नहीं होता। सम फॉर्म्स ऑफ जो मिल्क अवेलेबल है उसके अंदर विटामिन डी होता है कुछ मकदार में, लेकिन ऑल जो फॉर्म्स हैं उसमें मिल्क में हमारे यहाँ फोर्टिफाइड नहीं होता विटामिन डी, तो इसलिए हमें विटामिन डी की सप्लीमेंट्स की भी जरूरत होती है, जिसकी अगेन जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है बाय द अथॉरिटीज वो तकरीबन 600-800 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, तो वो हमें लेना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ हमें ना मुख्तलिफ सोसाइटीज ने जहां गाइडलाइंस डेवलप होती हैं हमें ना सेफ अपर लिमिट भी बताया कि कहां तक सेफ अपर लिमिट है विटामिन डी इनटेक। तो 4000 यूनिट्स जो हमारी एकेडेमिया ऑफ मेडिसिन है जो कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस को जज करती है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की, वो रिकमेंड करती है कि सेफ अपर लिमिट ऑफ विटामिन डी इनटेक जो है वो तकरीबन 4000 यूनिट्स है एक डे के अंदर। तो इसको थोड़ा सा हमें मलहूज नजर रखना चाहिए कि हम कितनी मकदार में विटामिन डी ले रहे हैं। डॉक्टर्स आमतौर पर विटामिन डी की जब कमी होती है तो कुछ लार्ज डोजेज में विटामिन डी देते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन जब वो कमी पूरी हो जाए तो फिर एक मेंटेनेंस डोज पे हमें रहना चाहिए कि वो कमी दोबारा ना हो। तो इस सूरत में तकरीबन जैसे कहना चाहिए कि जब विटामिन डी की बहुत कमी हो जाए, यानी मैं नॉर्मल लेवल्स पे भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, तो तकरीबन 20 नैनोग्राम पर एमएल जो है वो एक विटामिन डी इससे कम हो 20 से तो इसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं, और 20-30 एक स्टेट है जिसे हम इनसफिशिएंसी कहते हैं कि कमी तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा डिजायरेबल लेवल नहीं है, तो 30 से ऊपर एक अच्छा डिजायरेबल लेवल है। अगेन 30-50 के बीच में हमें इसको रखना चाहिए, 50 से ऊपर इसके शायद इतने फायदे ना हो और इस बात का भी इम्कान है कि कुछ नुकसानात ना डेवलप हो जाए अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा हो जाए हमारे जिस्म के अंदर। तो ये हम इसको रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस जो हैं आम हालात के अंदर अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो तकरीबन 600-800 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी हमें मिलना चाहिए। अब ये बास सप्लीमेंट्स में भी अवेलेबल है, बास सप्लीमेंट्स में 1000 के भी सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं यूनिट्स के, 2000 यूनिट्स पर डे के भी हमें सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। और सम तो सेफ अपर लिमिट जैसे मैंने कहा 4000, तो बास हमारे यहाँ 5000 की भी प्रिपेशंस हैं जो हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और लेकिन अगर कमी हो गई है विटामिन डी की तो फिर उस सूरत में हम बाज दफा 100,000 यूनिट्स वीकली कहते हैं फॉर 4-6 वीक्स के लिए, तकरीबन 600 600,000 यूनिट्स यानी 6,00,000 यूनिट्स हमें मिल जाएं वो जनरली कमी को पूरा करने के लिए काफी होते हैं। तो वीकली बेसिस पे हम बड़ी डोसेजेस दे रहे होते हैं या 200,000 यूनिट्स की भी डोज आती है वो भी हम दे रहे होते हैं, लेकिन ये 3 to 4 डोजेजेस यानी 6,00,000 से 8,00,000 यूनिट्स आ गए इससे हमारी कमी जो है पूरी हो जाएगी।
0: सही
1: है। हम इसको बाज दफा लोग ये करते हैं कि जो लार्ज डोजेजेस होती हैं 200,000 की वो बहुत फ्रीक्वेंटली लेते रहते हैं और लेवल्स मॉनिटर नहीं करते, उस सूरत में फिर बाज दफा विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है, कैल्शियम के लेवल बहुत बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर।
0: सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे टाइमिंग्स के हवाले से मैंने अभी बात की कि बेस्ट टाइमिंग्स सप्लीमेंट्स लेनी क्या होती है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि जिस टाइम मतलब रात के टाइम अक्सर लोगों ने ले लिया होता है जिसका फायदा नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि बेस्ट टाइमिंग्स क्या होती
1: है। जनरली जैसे आपने भी कहा कि मॉर्निंग टाइम्स जो होते हैं वो बेहतर टाइमिंग्स होते हैं, और वाइटामिन डी के लिए तो बेहतर ये कि ये हम डाइट के साथ ले लें ताकि हमारी इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए।
0: सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली जैसे हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, और यू नो मसल्स में पेन हम अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं, फटीग फील हो रहा है, तो क्या मतलब इसके बेसिकली क्या रीजन होता है, इसकी वजूहात में कैल्शियम की कमी जो है वो शामिल है या ये किसी और वजह से हो सकता है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि हम अक्सर इस चीज को जो है खुद से ही अज्यूम कर लेते हैं कि टांगों में दर्द हो रहा है या बॉडी में पेन हो रहा है, चलो मतलब कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी स्टार्ट हो गई है, अब जाके हम फौरन से जाके सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं, सवाल से थोड़ा सा पता है।
1: तो ये सिम्टम्स विटामिन डी या कैल्शियम की अगर डाइट में इनफ नहीं जा रहा तो उसकी कमी में भी इस तरह की सिम्टम्स हो सकती हैं, और इसके अलावा इन सिम्टम्स का ना इन जनरल भी बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जैसे मैं थायराइड डिसऑर्डर्स देख रहा होता हूँ, डायबिटीज देख रहा होता हूँ, तो हम अपना जो हमारी मेन बीमारी होती है उसके अलावा हमारा मरीज के साथ अच्छा खासा टाइम जो लगता है वो इस बात पे भी लगता है कि उसको एक्स एंड पेन्स हो रहे होते हैं। तो ये एक तो स्ट्रेस लेवल हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है, और एक डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन में हम अक्सर होते हैं, इन कंडीशंस का भी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो हमारी बॉडी काइंड ऑफ जिसे कहना चाहिए हर वक्त एक एक एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर होती है, और हमारे मसल्स जो है वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर जब हमारे मसल्स जो है पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं तो फिर हमें जिसे कहना चाहिए वो मसल जो है फिर फटीग कर जाते हैं, और जब फटीग कर जाता है मसल तो वो एज एन एक मसल एक के तौर पर या मसल पेन के तौर पर वो प्रेजेंट करती, वो हमें महसूस होता है कि अब हमारा मसल जो है वो पेन हो रहा है, खुसूसन जैसे बैक ऑफ द हेड में बैक अपर बैक के मसल्स, हमारे शोल्डर के अराउंड के जो मसल्स हैं ये अक्सर स्टिफ हो जाते हैं, हमें पेन हमें महसूस हो रहा होता है क्योंकि हम एक जिसे कहना चाहिए डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में होते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इसका अच्छा इलाज ना एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के अंदर है, अगर हम डेली वॉक करेंगे, हेल्दी हमारी डाइट होगी, और कुछ हम अपने डिफरेंट मसल ग्रुप को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्टिविटी जैसे स्कूल में हमें बच्चों बचपन में पीटी कराते थे वो असेंबली के अंदर, समझ लें वो वाली जो उछल कूद है थोड़ी देर या स्ट्रेचिंग है वो हमें बहुत इन चीजों के अंदर हेल्प करेगी, और हमें एडिक्वेट कैल्शियम विटामिन डी और बाज दफा विटामिन B12 अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल मेंटेन रखना चाहिए। इसमें सप्लीमेंट्स का भी रोल है लेकिन एक हेल्दी डाइट से हमें अक्सर चीजें मिल जाती हैं।
0: सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे मैदे से रिलेटेड दवाइयां हो गई और स्टेरॉइड्स हो गए और कोई भी ऐसी मेडिकेशन हो गई, तो वो जिस्म में जैसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ये चीजें पैदा कर सकती हैं।
1: जी हाँ, तो हमें थोड़ा सा ना एसिड हमारे स्टमक में, जाहिर है कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि वो बाज दफा इन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में दूसरी चीजों के एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करता है। अगर हम बिल्कुल एसिड को स्टमक से खत्म कर देंगे मुख्तलिफ हम मेडिकेशंस लेके, तो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी जैसे कहना चाहिए कि मुतासिर हो जाती है। इसी तरीके से जो स्टेरॉइड्स हैं वो अगर किसी बीमारी की वजह से आपको दिए जा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम हो सकती है और बोन्स वीक हो सकती हैं। तो जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं उनको अच्छी डोज में कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं साथ प्रोटेक्शन के लिए।
0: सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरूरी होता है कि हर उम्र के अफराद को जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, या मतलब सिर्फ जिनके अंदर कमी है उन्हीं को सप्लीमेंट्स पे जाना चाहिए, या नॉर्मली जिनको नहीं है कमी, अगर बॉडी उनको प्रॉपर इनटेक मिल रहा है खाने से, उनकी डाइट से, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है सप्लीमेंट्स की?
1: जैसे मैंने कहा कि यंग लोगों के अंदर 800-2000 मिलीग्राम्स का हमें कैल्शियम चाहिए होता है, और अगर हमारी डाइट अच्छी बैलेंस्ड डाइट है, उसमें दो सर्विंग्स ऑफ मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे हम दूध भी पी रहे हैं और थोड़ा सा हमने दही का भी हमारे अंदर इस्तेमाल है, तो हमारी डाइट के अंदर या फिश का हमारे अंदर अच्छा इस्तेमाल है जिसमें हमें विटामिन डी मिल जाएगा, तो हमारे लिए ये चीजें जो है वो काफी हो जाती हैं। अब ओल्ड एज में बाज दफा ये कि रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी ज्यादा होती है कि ये लोग ज्यादा रिस्क पर होते हैं हड्डियों की बीमारी के और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो इनको सप्लीमेंट की जरूरत होती है, और एज के साथ साथ लोगों की जो डाइटरी हैबिट्स है, डाइट इनटेक भी कम होता चला जाता है, भूख उनकी कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों में फिर हमें जब अगर उनको एडिक्वेट डाइट में नहीं जा रहा हो तो हमें सप्लीमेंट करना चाहिए।
0: सही सही। अच्छा, क्योंकि कैल्शियम की कमी के हवाले से हम जो है अपने शो पे बात कर रहे थे, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा बिल्कुल कम रह गया, हम अपने लिस्टर्स को बता दें, आखिरी सवाल बस ये करेंगे कि जैसे दांतों पर इस चीज के क्या असर होते हैं?
1: दांतों की हेल्थ के लिए भी यकीनन जरूरी है, खुसूसन बचपन के अंदर जब बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो टीथ इरप्शन का टाइम होता है उस वक्त एडिक्वेट कैल्शियम जरूरी होता है, विटामिन डी जरूरी होता है ताकि उनकी हेल्दी डाइट हो। इसी तरह तो बच्चों के अंदर इसकी बिल्कुल अहमियत है,
0: बिल्कुल,
1: कि उनकी डेंटिशन के लिए।
0: सही सही। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप FM 100 पर प्रोग्राम सुन रहे थे हार्मोन टॉक्स, विच इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एडको ग्रुप। डॉक्टर कमर मसूद हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे कैल्शियम के हवाले से आज जो है बात कर रहे थे कि कैल्शियम की कमी और ज्याती जो है वो हमारे जिस्म पर क्या उसके असरात होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, टाइम बेसिकली जो है वो बहुत कम रह गया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस वंडर फुल नॉलेज अबाउट कैल्शियम एंड वाइटामिन डी। इस हवाले से आज हमने शो पे डिस्कस किया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर्स हु हैव लिसन्ड आवर शो। एंड अभी आप लोगों से चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।

Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you guys. I tune into FM 100 Pakistan, and aap sun rahe hain hamara show, jiska naam hai Genie in a Radio. Ab to aap logo ko yaad ho gaya hoga. Ab to I guess agar main naam bhi bataun, to aapko pata hai ki show jo hai Genie in a Radio hai, aur mera naam bhi aap logo ko yaad ho hi gaya hoga. So my name is Jasmine. Aap log messages kar sakte hain 3636 par. Aap logo ko pata hai ki request show hai, to isme hum jo hain wo request fulfill karte hain aap logo ki, aur आप लोग हमें पेज पे भी मैसेज करते हैं और 3636 पर भी मैसेज करते हैं. अब ये आपकी चॉइस है कि आपने मुझे पेज पे मैसेज करके रिक्वेस्ट बतानी है, विच इज facebook.com/rj.jasmine, एंड वहां पे आप इनबॉक्स करके बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो 3636 पर मैसेज करके बता सकते हैं जो आप गाना सुनना

0: Alrighty, Janelle, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. तरीके का और बहुत ही आसान है, जस्ट टाइप किए जाए देन लीव स्पेस आपका मैसेज आपका नाम एंड देन आपकी रिक्वेस्ट और से 3636 पर भेज देना है, या चाहते हैं तो facebook.com/rz.jasmine पे भी आप भेज सकते हैं. मीनवाइल एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों से, मैसेजेस भी शामिल करते हैं और आप लोग की रिक्वेस्ट भी इंक्लूड करते हैं. हमारे साथ रहिएगा एंड मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद.
1: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से. पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर.
3: This program is brought to you by
4: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Dengue ek khatarnak bimari hai jo machhar ke kaatne se phailti hai. Subah suraj nikalne ke baad aur sham suraj ghurub hone se pehle ye machhar aapko kaat sakta hai. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
7: FM247365
8: Listeners tell us about FM 100.
9: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
10: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work. It's
8: number one music station. FM 100.
11: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.

Alrighty, so now welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड मैसेजेस आप लोग हमें कर रहे हैं 3636 पर एंड facebook.com/orchid.jasmine पे भी आप हमें मैसेजेस कर रहे हैं फॉर योर रिक्वेस्ट. तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसान है. एंड पेज पे भी हमारे पास काफी सारे मैसेजेस जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं. एंड लाइबा ने हमें मैसेज किया है. लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एंड ऑल्सो शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द ट्रैक कॉल्ड ब्लॉक बस्टर. ओके सर, वो प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. शायद ने हमें मैसेज किया है. अस्सलाम वालेकुम जीनी. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज शाहिद. रूप ने मैसेज किया है पेज पे एंड कहते हैं नादिया हसन का कोई अच्छा सा ट्रैक इंक्लूड कर दीजिएगा शो पे. जान हो गया है, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. सो जनाब, 4 बजे तक आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं. टॉपिक भी थोड़ी सी देर में बताएंगे, पहले थोड़ी रिक्वेस्ट शामिल कर लेते हैं. द ट्रैक इज वी आर प्लेइंग राइट नाउ, ब्लॉकबस्टर. मिलते हैं इस गाने के बाद. लाइव की रिक्वेस्ट है, मेरे साथ रहेगा.

0: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.
1: Listeners tell us about FM 100.
2: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
3: Listen, because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
1: Number one music station. FM 100.
0: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.
4: Okay, Janelle, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान and आप लोग हमें messages कर रहे हैं 3636 पर और facebook.com/rz.jasmine पे भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने कौन सा गाना सुनना है. ओके, सो अबाउट द टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जो हैं वो दिल की सुनते हैं या दिमाग की. आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं 3636 पर. बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कभी हम दिल की सुन रहे होते हैं एंड दिमाग का जो ओपिनियन होता है वो हम इग्नोर कर देते हैं. लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दिल की नहीं सुननी पड़ती, दिमाग से काम लेना होता है. सो लेट अस नो ऑन 3636 व्हाट डू यू गाइस प्रेफर, कि दिल के फैसले ज्यादा अच्छे होते हैं या दिमाग के. लेकिन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के क्या है. बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो दिमाग से नहीं चलते हैं, वो दिल से ही चलते हैं कि दिल क्या कह रहा है. और बहुत से लोग वो दिल की कोई सुनते ही नहीं है. नहीं भाई, दिमाग से ही चलना है. दिल तो बेवकूफ है. खैर, आप मैसेज करके बता सकते हैं 3636 पर. मैसेजेस बहुत सारे आना शुरू हो गए हैं. जरीन नूर ने मैसेज किया है, सलाम, कैसे हैं आप, शो देर से आज सुना है. अच्छा जरीन नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. और रिक्वेस्ट इन्होंने किया है पानियों पर चल रही है सजाद अली का. आपको सजाद अली लगता है बहुत ज्यादा पसंद है ना जरीन. आप ज्यादातर शो पे सजाद अली के सॉन्ग ही रिक्वेस्ट करती हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, नायला ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम नायला, बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. आप बताइए आप कैसी हैं. अच्छा, दिल जानिया सॉन्ग ने रिक्वेस्ट किया है हदीका ज्ञानी का, चैलेंज जरूर प्ले कर देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे. द ट्रैक इज बूम बूम बाय नासिर हसन. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहेगा.

Alrighty, guys, welcome back. Aap sun FM 100 Pakistan and 3636 पर आप मैसेज कर रहे हैं एंड facebook.com/rzrjasmine पे भी आप अपना फीडबैक हमें दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे. आज जो हम बात कर रहे हैं इट्स अबाउट कि आप लोग दिल की ज्यादा सुनते हैं या फिर दिमाग की, तो आप हमें मैसेज करके बिल्कुल बता सकते हैं 3636 पर, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि तरीकेकार बहुत ही आसान है. So what I'm gonna do, I'm gonna be moving on towards another track. और हमारे पास request आई थी for the song Dil Jaaniya by Hadika Kiani. तो ये track हम play करते हैं, उसके बाद फिर हम Zareen Noor की request की तरफ जाएंगे. उन्होंने सजाद अली का song request किया है. Right now the track is Dil Jaaniya by Hadika Kiani.

0: Radio, radio.
1: वेलकम बैक जनाब. आप लोग मैसेज करके हमें रिक्वेस्ट जो है अपनी भेज रहे हैं. जरीन नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. उन्होंने लिखा है, मैं अपने दिल की ज्यादा सुनती हूँ, ज्यादा दिल जो कहता है वही करती हूँ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और सी, मैंने कहा था ना इनको सजाद अली ज्यादा पसंद है, इसलिए वो मोस्टली उन्हीं के गाने जो है रिक्वेस्ट कर रही होती है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज जरीन नूर. एंड हिबा ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम जायज. वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ हिबा, बताइए आप कैसे हैं. एंड टॉपिक के हवाले से कहा है कि पहले दिल की सुनती थी लेकिन अब दिमाग की सुनती हूँ. हाँ यार, जरूरी है अब. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सॉन्ग के हवाले से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, क्या लिखा है, अच्छा मुखरा शहजाद रखा, ठीक है जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज हिबा. सो जरी नूर, हम आपके सॉन्ग जो है वो प्ले कर रहे हैं, पानियों में बाय सजाद अली. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
6: FM247365 In radio.

0: your fingers do the talking. SMS now on 3636.
1: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
0: Let your fingers do the talking. SMS now on 3636.
3: Genie in radio.

Alrighty, welcome back. So you're listening to FM 100 and... हमारे पास मैसेज आया है नबीहा का. वालेकुम अस्सलाम नबीहा. एंड बिल्कुल यार ऐसा होता है. उन्होंने कहा है कि अभी आपने जो सोशल स्किल बताया है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम नहीं रियलाइज कर पा रहे होते हैं. एंड बहुत से मोमेंट पे हम इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि हम फौरन से कोई रो रहा होता है उसको चुप ही करा देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट. यू मोस्ट वेलकम. यार ये जरूरी था क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं हमारा अक्सर नॉर्मल यही एक हमेशा से एक बिहेवियर चलता हुआ आ रहा होता है. एंड समटाइम्स यू नो वी नीड टू चेंज दैट थिंग कि आपको कभी एज एन यू नो साइकोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें तो नहीं आइडिया हो रहा होता है. और स्ट्रेस की ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको ब्रेक करना जरूरी होता है. उनमें से एक ये है कि अगर इफ समवन इज क्राइंग नेवर स्टॉप हिम और हर फॉर यू नो के बोलो के स्टॉप क्राइंग. नेवर डू दैट क्योंकि स्ट्रेस का एक ये बेहतरीन तरीका होता है कि आप रोकर अपना जो भी आपका स्ट्रेस है आपका डिप्रेशन है आप उसको कम करें अपना दिल का बोझ हल्का करें. बताने का मकसद यही था क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल है सोशल हैक है. बहुत से लोगों को इस बारे में जाहिर नहीं आइडिया होता है और जरूरी होता है कि इफ समवन इज क्राइंग देन यू जस्ट हैव टू काम हिम और हर. ठीक है उस वक्त पूछने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस वक्त खुद ही उसका बंदे का दिमाग काम नहीं कर रहा होता जो रो रहा होता है जिसके साथ कोई परेशानी होती है. ओके सो मीन वाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक. हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी शहजाद रॉय के गाने की. द ट्रैक इज मुखरा. मिलते हैं इस गाने के बाद.

Alrighty guys, welcome back. So show का time जो है वो almost end पे है और इंशाल्लाह आपसे next week मुलाकात करेंगे. facebook.com/orjit.jasmine पे messages जो हैं वो आए हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी नाम शामिल कर लेती हूँ. रौनक, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड हुमैरा खान, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल, आपने भी किया. अमार मुस्तफा, बहुत शुक्रिया. एंड शेख रबी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट एज वेल. एंड खान, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे. अपना बहुत बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा. एंड लिविंग यू विद द लास्ट ट्रैक है नया फ्रॉम द मूवी जैकपॉट. और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं पेज पे बता सकते हैं. रखिएगा बहुत सारा ख्याल. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: dedication for maximum music.
1: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365 fm247365
5: back to back only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार
1: मकाम जहां खाब वहां HBL.
3: नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको

0: करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
1: बंद करो ना ढक्कन।
2: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBO।
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, प्लस डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBO ब्रांच। HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
5: This program is brought to you by
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
3: And HBO Freedom Account, jahan khwab wahan HBO.
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
0: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, across the nation.
4: This is FM 100.
5: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBO ब्रांच। HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
7: अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहीन नवीद है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जिस के शोबे से मुंसलिक हूँ। बाल गिरने के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि सिर्फ तेल या शैम्पू बदलने से मसला हल हो जाता है। हकीकत यह है कि बाल गिरने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, जैसे गजाई कमी, हार्मोन्स या मौसी अवामिल। अगर बाल गैर मामूली हद तक गिर रहे हों तो जिल्द और बालों के माहिर डॉक्टर से मशवरा करें। बरवक्त तशखीस ही दुरुस्त इलाज की बुनियाद है।
8: ये पैगाम एक्को लेबोरेटरीज और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के तावन से नशर किया गया है।
5: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBO ब्रांच। HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
9: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
10: बंद करो ना ढक्कन।
11: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
13: This program is brought to you by
14: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
11: And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
5: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
15: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365।
16: तौहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस मैयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Hair No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de Mobile App se complete control. No Frost, no worries.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
6: Sweep be clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत, कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
5: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL. एंड
6: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
0: 100 FM.
7: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हु केयर्स अबाउट योर फ्यूचर. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
8: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur Bhool Ja,
1: Phoenix Laga aur Bhool Ja. And Sweep Be Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहाँ HBL.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहां HBL.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
4: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, फास्ट डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: तूफान है.
7: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
9: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365.
11: Let's celebrate
12: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
13: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने अपने आप को सपोर्ट कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें।

0: This program was brought to you by FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM
2: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
3: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: 100 FM
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
4: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247 365
6: FM247 365
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी एक समझदार माँ बनेगी सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी आने वाली नस्लें संवारेगी एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान
3: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरूने मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
0: Like us on Facebook.com/FM247365

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
3: Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: This program was brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: FM 200 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365

कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ

0: देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मिट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी साथ तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

वेलकम बैक कहेंगे जनाब आप सबको भूलने वाले से। आज के शो में जो गजलों का इंतखाब मैंने किया है, पाकिस्तान के जितने भी मारूफ गजल गायक हैं उन सब की आवाज से आप महसूस होंगे, जो लेजेंड हमारे गजल गायक हैं। गुफरान भाई आ गए हैं और गुफरान भाई इस हवाले से कुछ कीजिए। ये ठीक था कुछ, ये मुझे कुछ ठीक लगा था, लेकिन खैर गुफरान भाई क्योंकि शेर जब मैं पढ़ता हूं, आप लोगों के इंतखाब जब मैं पढ़ता हूं, तो उन इंतखाब में जब आवाज में गुफरान भाई जादू डालते हैं तो वो और सुनने में अच्छा लगता है। तो अभी भी आपको मेरी आवाज में बहुत सारी तब्दीली इफेक्ट्स जो लगा रहे हैं गुफरान भाई वो आपको महसूस हो रहे होंगे। तो जनाब आज मैंने आपसे एक सवाल किया है कि हमारे मारूफ शायर अहमद फराज

अरे संजू कहती हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बज़्म शायरी की बैठक में खुश आमदीद कहती हूँ। आफियत की अनगिनत दुआएं। जज़ाकअल्लाह आप सबने दुआओं में याद रखा। मौसमी बुखार ने हमरा रहने की कसम खाई है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कहती हैं बताया उसको जाता है जिसे मालूम कुछ ना हो। तुम्हें तो सब खबर है ना मेरे अच्छे बुरे की। तुम सभी तफसील रखते थे। तुम्हें कैसे बताऊं मैं मेरे हालात मुश्किल हैं। मेरे दिन रात मुश्किल हैं। मेरे अल्फाज पूर्णम हैं। मेरा लिखा हुआ सब कुछ मेरी नज़में मेरी गजलें मेरे जज्बों का मातम है। मुझे दुख की सलीबों पर अकेला छोड़ने वाले मुझे खुद से बनाकर फिर मुझे खुद तोड़ने वाले तेरे हर एक आंसू का कफारा भर रही हूं मैं। बताना तो नहीं था पर सुनो अब मर रही हूं मैं मर रही हूं मैं। अपने पसंदीदा प्रोग्राम के अख्तिताम तक साथ हूं। नशा हो मान भरम हो हजूर टूटता है। नशा हो भरम हो हजूर टूटता है। शिकस्त दिल के सबब सब गरूर टूटता है। तमाम उम्र गुजरती है कारे वश्त में फिर एक रोज अचानक सरूर टूटता है। और ऐसी जर्ब लगाती है जिंदगी के कोई चट्टान जैसा भी हो तो जरूर टूटता है। वाह क्या बात है। अपना बहुत ख्याल रखिए। इल्तिमास दुआ अल्लाह ने के बान। और इनके इंतखाब जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। वो खामोशी से सुन रही हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि आपने शमूलियत इख्तियार की। तबीयत नासाजगी के बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे और बढ़ते हैं जनाब। और ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं भी आ गई हूं। अरे वाह आप सुन रही हैं। ये दुबई से मैसेज आया है मेरा ख्याल है। अगर मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं तो फौरन एक और मैसेज कीजिए। और इरफान मेमन कुछ और भी बता रहे हैं जनाब। थैंक्स सुनियो आपका आपको पसंद आया। और सुनियो तबीयत थोड़ी डाउन है। शब्बा खैर जनाब। अभी शब्बा खैर क्यों कर रहे हैं आप कल जरूर आइएगा शो में। आपसे कल हमने बहुत सारी बातें करनी है। हमारी प्यारी प्यारी जो बहने हैं मेमन सिस्टर्स उनकी जानिब से आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से तोहफे हैं। वो कल के शो में आपके लिए शामिल करेंगे। अच्छा जनाब हमारे प्यारे से लाला के भी इंतखाब आ गए हैं। लाला कहते हैं दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं सब अपने चेहरों पे दोहरा नकाब रखते हैं। दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं सब अपने चेहरों पे दोहरा नकाब रखते हैं। हमें चराग समझकर बुझा ना पाओगे हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। ये मैकदा है वो मस्जिद है वो बुतखाना है। ये मैं कदा है वो मस्जिद है वो बुतखाना है। कहीं भी जाओगे
फरिश्ते हिसाब रखते हैं। क्या बात है लाला, वाह वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। लाला की छोटे छोटे से इंतखाब हैं, एक और शामिल करते हैं। कहते हैं कि रूठ बैठी है बहार तेरे जाने से, लौट आओ किसी बहाने से। दिल मेरा बुझ गया है फुरकत में, रोशनी छीन ली आशियाने ने। अरे लाला ये बात हुई ना, और खुशी ये हुई कि आपने शायरी के इंतखाब भेजना शुरू किए हैं जी। अच्छा भाई, दुबई से भी एक इंतखाब आया है, वो भी शामिल शो करते हैं। और ये इंतखाब हमें भेजने वाली हैं फरहीन। कहती हैं कि क्या लगे आंख कि फिर दिल में समाया कोई, रात भर फिरता है इस शहर में साया कोई। फिक्र ये थी कि शबे हिज्र कटेगी क्यों कर, लुत्फ ये है कि हमें याद ना आया कोई। शौक ये था कि मोहब्बत में जलेंगे चुपचाप, रंज ये है कि तमाशा न दिखाया कोई। शहर में हमदम दरीना बहुत थे नासिर, वक्त पड़ने पे मेरे काम ना आया कोई। क्या बात है नासिर काजमी साहब, हाय हाय भाई फरीन, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा आज के शो में कुछ सिलसिलाकार ही ऐसा होता है, आप लोगों की जानिब से इंतखाब साथ में होते हैं तो उन्हीं में टाइम गुजर जाता है, चर्चा हो ही नहीं पाती, लेकिन खैर आपके मैसेजेस सराखों पर। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है आप कानोमान बल्दिया से। कह रहे हैं आज लाइव आ जाए, आज लाइव आ जाए, नवान भी कल आएंगे इंशाल्लाह। और हमारे प्यारे से फरहान भाई भी आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल स्वीट स्वीट लिसनर्स, हाउ आर यू, हाउ इज द डे। और अम्मी जी और अम्मी जैसी प्यारी सी आंटी और तमाम करीबी और कलबी दोस्तों के लिए ढेरों सलामती की दुआएं। अच्छा भाई इन्होंने भी दुरुस्त जवाब दे दिया है और इंतखाब इनकी जानिब से भी आया है, वो शामिल शो करते हैं। और ये इंतखाब है जनाब सागिर सद्दीकी का, कुछ दरवेशी शायरी है लगता है। कहते हैं कि दीवाना है बेखुदी में बड़ी बात कह गया, दीवाना है बेखुदी में बड़ी बात कह गया, एक हश्र की घड़ी को मुलाकात कह गया। वाह वाह क्या बात है, दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कह गया, एक हश्र की घड़ी को मुलाकात कह गया। पहला तर्ब शनास बड़ा संगदिल था दोस्त, पहला तर्ब शनास बड़ा संगदिल था दोस्त, चीखें थी जिनको झूम के नगमात कह गया। वाह वाह वाह भाई बहुत खूब, सागर सद्दीकी साहब भाई कमाल है कमाल है, अच्छा लगा अच्छा लगा। अच्छा भाई एक और संजू भैना को सलाम पेश खिदमत है, नसीबे दुश्मनना क्या हुआ मेरी प्यारी बहना को, अल्लाह ताला मेरी बहन को बुरी नजर से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन जनाब, नजर ही लगी होगी इनको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब इस हवाले से भी चलें थोड़ी सी बात हो जाए, ये मेरी प्यारी सी बहन का ये मैसेज आया, अभी इनका एक बड़ा खूबसूरत सा इंतखाब भी हमने शामिल करना है लेकिन वो अगले लिंक में करेंगे। अच्छा जी दुबई से कहा जा रहा है, थैंक्स जनाब, जीती रहें मुस्कुराती रहें। आप और भी इंतखाब अगर आपकी नजर में या आपकी डायरी में या आपके मोबाइल में मौजूद हैं अच्छे अच्छे से तो जरूर भेजिएगा। तो बात नजरे बद के हवाले से कुछ करेंगे, मगर क्या ख्याल है क्यों ना आपको गजल की जानिब भी लेके जाया जाए, या अभी
क्योंकि माशाल्लाह से ट्रैफिक जो है वो काफी बढ़ गया है 3636 पर, तो उस जानिब बढ़ते हैं पहले, और उसके बाद यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा जी, अनीस भाई का मैसेज हो गया था और अयूब लाला का मैसेज भी हो गया था, नहीं ये वाला नहीं हुआ था, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया उन्होंने। और अहमद फराज के ओरिजिनल या रियल या असली नाम के हवाले से, और उन्होंने बाकायदा तारीख पैदाइश भी लिख दी 1931 कोहाट, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अहमद फराज साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद मोहतरम के बारे में तो आपको पता ही है माशाल्लाह से, जावेद अख्तर साहब के बारे में तो हमारा ताल्लुक भी पिशावर से रहा है, तो अहमद फराज मेरे वालिद साहब के बहुत प्यारे दोस्त थे। अनीस साहब कह रहे हैं भाई आज एंड तक साथ रहूंगा, आज का शो मेरा फेवरेट है। अरे वाह वाह वाह, अक्सर आ गई हैं, सलाम के बाद कह रही हैं क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है, मैं आपका शो हर रोज सुनती हूँ, बहुत सुकून मिलता है, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, तमाम सुनने वालों को सलाम। अक्सा बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आपको याद रखेंगे, और गाहे बगाहे अगर आपकी शमूलियत ना हो और आप सुन रही हो तो हम आपको याद रखेंगे, और जरूरी नहीं है कि नाम लिया जाए, हम कहेंगे कि हमारे वो लिसनर जो खामोशी के साथ सुनते हैं, मोहब्बत के साथ सुनते हैं, उन सबको हमारा सलाम, और उनके लिए प्यारी सी गजल, कभी कभी नाम भी लिया करें। सलीम मेमन भाई आ गए हैं और सलाम के बाद कह रहे हैं कि संजीदा और मुश्क जी को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, बहुत सारी दुआएं दी हैं उन्होंने। आंसुओं की कीमत वो क्या जाने जो हर बात पे आंसू बहाता है, इसकी कीमत तो उनसे पूछो जो गम में भी मुस्कुराता है। अरे सलीम मेमन भाई क्या बात है, बड़ा अच्छा शेर भेजा। और अयूब लाला कहते हैं कि माहीन शेरबानों को कोई अच्छा सा रोमांटिक गजल सुना दीजिएगा ताकि निगहत खुश हो जाए। बिल्कुल सुना देंगे जनाब आपकी फरमाइश सलाखों पर। और गफार मरीज कहते हैं, गफार मरीज का मैसेज जो है वो अगले लिंक में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं एक और गजल की जानिब। गजलें बहुत प्यारी प्यारी सी हैं, अभी एक, हाँ जी बिल्कुल, आपको एक गजल सुनाते हैं, गालिब का कलाम है और आवाज है आबदा परवीन की, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी।

0: हिज्जे करने पड़े हैं। अगला लफ्ज जो है वो समझ में नहीं आ रहा, करी है मैं सही लो, तो इसको जाहिर है मैं पूरा पढ़ूंगा अनीस भाई, तो उसके बाद कोशिश होगी कि रदीफ काफिये को कायम रखते हुए।
1: वो करी जो आप पढ़ रहे हैं कड़ी तो नहीं है?
0: मैं वही सोच रहा था, कड़ी है, करी है, कड़ी है मेरे सही लोगा अगर चबूज तन्हाई का भरी है, भारी है, भारी है तो समझ में आ गया, तन्हाई का भारी है, बोझ तन्हाई का भारी है, अगरचे ये भी समझ में आ गया भाई, अगरचे बोझ तन्हाई का भारी है, लूंगा ये भी समझ में आ गया, लेकिन करी है मैं सही ये समझ में नहीं आ रहा।

नहीं भाई अनीस भाई, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुफरान भाई भी सामने बैठे हुए हैं, दिमाग नहीं चल रहा। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और संजू के इंतखाब की जानिब और शो के हवाले से, क्योंकि दूसरा लिंक है। पहले लिंक में इनका एक इंतखाब शामिल किया और दूसरे लिंक में इनका दूसरा इंतखाब। गुजारिश है आपसे गुफरान साहब, बड़ी मुश्किल उर्दू लिखी है संजू, लेकिन पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहती हैं कि सुनो दिल की दुआ, कीमते उम्रे मन मन मन, सुनो दिल की दुआ, कीमते उम्रे मन, ए खुश वक्ते निगाह, इश्क कभी नफा नुकसान की जुबान नहीं बोलता, वो तो खामोशी से अपना सब कुछ महबूब की खैर पर रख देता है।

आधे सच के पीछे भेद दिया था, दिल ने छुपा वो छेद दिया था, जिसको मैं अब तक सौदा सूद समेत लौटा रहा हूं। जिसको अब तक मैं सूद समेत लौटा रहा हूं। बहुत खूब गुलजार, ये भी जिंदगी के हालात के हवाले से ही इन्होंने बहुत खूब लिखा है। और मेरी नौरीन बहना का इंतखाब जो है वो हम शामिल करते हैं अब, और क्योंकि अहमद फराज के हवाले से मैंने आपसे एक सवाल किया हुआ है कि अहमद फराज का असली नाम ओरिजिनल नेम क्या था, और माशाल्लाह से अभी तक जितने भी आप लोगों के जवाब आ रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं। तो फराज की क्योंकि बात हुई है तो फराज का इंतखाब भेजा है हमारी प्यारी सी बहन नौरीन ने, और कहती हैं तुम भी खफा हो लोग भी बरहम हैं दोस्तों, तुम भी खफा हो लोग भी बरहम हैं दोस्तों, अब हो चला यकीन के बुरे हैं बुरे हम हैं दोस्तों, अब हो चला यकीन के बुरे हम हैं दोस्तों, किसको हमारे हाल से नस्बत है क्या कहें, आंखें तो दुश्मन की भी पुरनम है दोस्तों, अपने सिवा हमारे ना होने का गम किसे, अपनी तलाश में तो हमें हम हैं दोस्तों, कुछ आज शाम ही से है दिल भी बुझा बुझा, कुछ आज मैंने जो है इफेक्ट हटा दिया है, मुझे खुद भी मजा नहीं आ रहा उसमें, कुछ आज शाम ही से दिल भी बुझा बुझा, कुछ शहर के चराग भी मध्यम हैं दोस्तों, इस शहर आरजू से भी बाहर निकल चलो, अब दिल की रौनकें भी कोई कोई दम है दोस्तों, सब कुछ सही फराज पर इतना जरूर है, सब कुछ सही फराज पर इतना जरूर है, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं दोस्तों। फराज का एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो भी आपकी समाधों की नजर कर रहा हूं, ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें कर दी, ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी, भाई दुबई से इंतखाब आया है एक और पूछ रही हैं कि आज गजल नाइट है। जी बिल्कुल आज गजल नाइट है माशाल्लाह से, मतलब आप शामिल शो भी हैं और आपको पता ही नहीं। निगार पाओ मेरे अश्क नार सा मेरे, कहीं तो मिल मुझे ए गुमशुदा खुदा मेरे, मैं शमाए कश्ता भी था सुबह की नवीद भी था, शिकस्त में कोई अंदाज देखता मेरे, वो दर्द दिल में मिला सोजे जिस्मो जा में मिला, कहां कहां उसे ढूंढा जो पास था मेरे, हर एक के शेर में मैं उसका अक्स देखता हूं, हर एक के शेर में मैं उसका अक्स देखता हूं, मेरी जुबान से जो अल्फाज ले गया मेरे, सफर भी मैं था मुसाफिर भी मैं था, अच्छा मैं नहीं है मैं है, सफर भी मैं था मुसाफिर भी मैं था राह भी मैं, सफर भी मैं था मुसाफिर भी मैं था राह भी मैं, कोई नहीं था कड़े कोस मां सिवा मेरे, वफा का नाम भी जिंदा है मैं भी जिंदा हूं, वफा का नाम भी जिंदा है मैं भी जिंदा हूं, अब अपना हाल सुना मुझको बेवफा मेरे।
वो चार अगर भी उसे देर तक ना पहचाना, जिगर का जख्म के नगमों में ढल गया मेरे। मुस्तफा जैदी साहब का ये इंतखाब है जो कि हमें भेजा है दुबई से फरहीन ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये गजल नाइट ही है जनाब। अयूब लाला कह रहे हैं कि जिगर कुछ लोगों को गरूर क्यों है, या क्या क्या समझते हैं कि उनको मरना नहीं है। असल में अयूब आफरीदी भाई, कुछ देर पहले एक और बात हुई और अब आपने एक बात छेड़ दी गरूर के हवाले से। गरूर और तकब्बुर एक ही बात है। कुछ लोगों को अपने हुस्न पे बड़ा तकब्बुर, बड़ा गरूर होता है कि मुझे खूब हसीन बनाया है, किसी को खातिर में ही नहीं लाते। और कई लोगों को ऐसे भी लोग मिलते हैं जो खातिर में लाकर भरे बाजार तन्हा छोड़ देते हैं। और जो गुरूर और तकब्बुर में होता है ना अयूब लाला, ये बात समझ लीजिए, वो वाकई ये समझते हैं कि उनको नहीं मरना, बस वो मार डालते हैं यार। अच्छा ये हमारे प्यारे से अमित गुल साहब ने अहमद फराज का असली नाम जो है उन्होंने बता दिया है। क्या बात है, बड़ी तफसील से, जाहिर है शायर हैं माशाल्लाह से हमारे अमित गुल साहब, तो उनको हम लोगों से ज्यादा शायरों के हवाले से नॉलेज है। तो बड़ी एक खूबसूरत उन्होंने बात लिखी है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई क्योंकि ये बात मैं तो जानता था और बहुत कम लोग जानते हैं ये बात अहमद फराज के हवाले से जो इन्होंने लिखी है। वो जरूर मैं कुछ ही देर में बताऊंगा जब आपको इसका जवाब, तो इसको भी नोट डाउन किया है मैंने और बताऊंगा कि गुल साहब ने क्या कहा था। अच्छा जनाब, फराज साहब का एक शेर आ गया है, लेकिन इससे पहले ये हमारे प्यारे से अयूब लाला ने भेजा है, तो इनका इंतखाब जरूर शामिल करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक गजल की जानिब ले जा रहा हूं क्योंकि मेरे गले में खिचखिच कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसको जरा दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब

वेलकम बैक कहूंगा आप सबको जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एनए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब तीन बजे तक, और तीन बजे तक ये महफिल सजी हुई है। आज कोई चर्चा नहीं हुई, आपके मैसेजेस आपके इंतखाब ही जो है वो शामिल शो कर रहा हूं। हमारी प्यारी सी बहन हलीमा पठान भी आ गई हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, MBBS इस टाइम समझ नहीं आया मेरी बहन। अनीस कह रहे हैं भाई शो तो बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, हड्डियों में काफी दर्द है, मेडिसिन भी चल रही है। अनीस भाई ख्याल रखें, भाई अपना ख्याल रखें। अच्छा आपको एक बात बताता हूं अनीस भाई के इस मैसेज के तवस्सुस से, अक्सर हम अपनी कोताहियों की वजह से ज्यादा बीमार पड़ते हैं और उसमें सबसे बड़ी कोताही ये होती है कि दवाई वक्त पर हम नहीं लेते। और आजकल के दौर में बीमारियों में जो इजाफा है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन चंद जो है वो आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा जो कि हमारी अपनी गफलत है। पहली तो बात ये कि हम दवाई टाइम पर नहीं लेते और दवाई टाइम पर ना खाने की वजह वक्त पर खाना ना खाना। दोपहर बहुत से लोगों का है, कुछ लोग बेशक वक्त पर खाना खाते होंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में लोगों की ये आदत बनती जा रही है कि ना दोपहर के खाने का कोई वक्त मुकर्रर है, ना रात के खाने का कोई वक्त मुकर्रर है। नाश्ता तो खैर दूर की बात है, जाहिर है आगाज ही जब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। नाश्ते का वक्त जो होता है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक या 10 बजे तक, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं 6 बजे से 10 बजे तक, इन औकात में सिर्फ ज्यादातर वो लोग नाश्ता करते हैं जो स्कूल जा रहे हो बच्चे या कोई काम पर जा रहा हो, और उसके अलावा जो घर वाले घर के अफराद हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। 12 बजे नाश्ता अगर हो रहा है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे अगर नाश्ता हो रहा है तो वो वक्त बेसिकली है दोपहर के खाने का, और दोपहर का खाना चला जाता है जनाब 4-5 बजे तक, और फिर रात का खाना जो है वो आपका चला जाता है 11-12 बजे तक, 1 बजे तक भी खा रहे होते हैं भाई। तो बिगाड़ जो आता है वो यहीं से आता है कि वक्त पर जो दवा नहीं खानी तो जाहिर है खाने के बाद ही दवा खाएंगे ना भाई। तो अब जब खाना ही वक्त पर नहीं होगा तो दवा वक्त पर कहां होगी, और जब दवा वक्त पर नहीं खाई तो अफाका कहां से होगा। और बस ये एक तो ये गफलत है हमारी, दूसरा ये है कि हम अपना ख्याल ही नहीं रखते। बस ये भी जहन में रखें कि हम डिपेंडेंट होते हैं ज्यादातर, कि मैं ये स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं कह रहा, ज्यादातर ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता, लाशौरी तौर पर हम डिपेंडेंट होते हैं कि अम्मी खिला देंगी दवाई या अब्बू याद दिला देंगे या बहन ले आएगी दवाई तो मैं खाऊंगा, या वो याद दिला रही है, खुद नहीं याद रखना, डिपेंडेंट हुए हैं, या शादीशुदा है तो बेगम जो है वो वक्त पर दवा दे दे, अब वो अगर कहीं मसरूफ है तो आप सारा जो नजला है उस पर गिरा देंगे, जो भी हो चाहे बहन हो वालदा हो, वालदा पर और वालिद पर तो नजला नहीं गिरा सकते, बहन पर गिरा सकते हैं, भाई पर गिरा सकते हैं, बीवी पर या बच्चों पर हम नजला गिरा देते हैं कि भाई मुझे याद क्यों नहीं दिलाया, दवाई क्यों नहीं खिलाई। गलत बात है, आपको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और रखा करें अपना ख्याल, हैं जी। अच्छा जनाब अब बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस की जानिब। आप असल में अनिल साहब के इस मैसेज के तवस्सुस से मैंने सोचा कि अगर ये बात जो है वो आप लोगों की समातों तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है कि हम वक्त पर खाना शुरू कर दें।
और वक्त आपको यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी की बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी अगर हम नाश्ता वक्त पर करें या खाना दोपहर का वक्त पर खाएं और रात का खाना वक्त पर खाएं, चाहे थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, बस इसकी आदत बनाने की कोशिश कीजिए, बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा भाई, कायनात अरसलान भी आ गई हैं और कह रही है डैशिंग सलाम टू ऑल FM 100 मोहल्लाज, और कह रही मैं यहां मौजूद और आज तो पोएट्री शो है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लिसनिंग पोएट्री शो। और कहते हैं आदाब अर्ज है बादशाह सलामत तमाम ही रियाया को और दरबारियों को, अभी आदाब अर्ज है अनारकली हाजिर है, जहां पना जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जी बिल्कुल कीजिए। और उफ क्या हसीन लम्हात होते हैं, फ्रंट सीट पर बैठे साथ हम सफर का साथ, और उसका हाथ थाम कर वो चाय की चुस्की लेते हुए बारिश की बूंदों का नजारा, वो मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू, हाय वो रात का पहर और मेरे महबूब का साथ।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब, यूं सजा चांद के छलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फिजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग। फैज साहब का कलाम और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जनाब अयूब लाला का मैसेज आया है, जिगर गुफरान भाई को दिल से सलाम। क्या बात है गुफरान भाई। और हिना गुल और सवा गुल को लाखों सलाम और ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। हाय लाला कितने प्यारे हैं आप। और जरीन नूर मेरी बहना कह रही हैं कि संजू का इंतखाब सुपर है, वो कह रहा सुपर से भी ऊपर है। और गुल साहब क्या कहते हैं जनाब, चाल अच्छी चली है दुश्मनों ने, खेल दिलचस्प होता जा रहा है। गुल साहब आपके यहाँ एक शेर होता है दो मिसरों का, मगर कमाल होता है भाई, कमाल होता है, मजा आता है, मजा आता है। और जनाब आगे बढ़ते हैं। हाँ फरहान भाई के मैसेज पढ़ने थे, उनका भी इंतखाब आया है। कहते हैं कि हिजर की धूप में छांव जैसी बातें करते हैं, आंसू भी तो माओ जैसी बातें करते हैं, रास्ता देखने वाली आंखों के उन्होंने ख्वाब, प्यास में भी दरियाओं जैसी बात करते हैं, खुद को बिखरते देखते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बात करते हैं। वाह वाह ये अच्छा लगा मुझे शेर। खुद को बिखरते देखते हैं कुछ कर नहीं पाते, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बात करते हैं, एक जरा सी चोट के बल पर अंधियारों से बैर। अच्छा जी, एक जरा सी जोत के बल पर अंधियारों से बैर, पागल दिए हवाओं जैसी बात करते हैं, रंग से खुशबुओं का नाता टूटता जाता है, फूल से लोग खिजाओं जैसी बात करते हैं। वाह वाह वाह वाह, हमने चुप रहने का अहद किया है और कमजर्फ, हमने चुप रहने का अहद किया है और कमजर्फ, हमसे सुखनारों जैसी बात करते हैं। ये मुझे लग रहा था, आखिर में मैंने शायर का जब नाम पढ़ा ना, मुझे शक हो रहा था कि ये इफ्तिखार आरिफ साहब का ये इंतखाब है, क्योंकि कुछ जो मिसरे थे उनका रंग झलक रहा था इसमें। और जनाब आगे बढ़ते हैं और जी एंड तक साथ हैं, दुबई वाले आज हमारे साथ हैं, तो दुबई वालों को हम एक गजल भी डेडिकेट करेंगे। नौरीन बहना क्या कहती हैं,

0: आज जाने की जिद ना करो. ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा. और अभी हम जिस गजल की जानिब जा रहे हैं जनाब, ये गजल हम अयूब आफरीदी की जानिब से डेडिकेट करेंगे. बहुत सारे नाम हैं जनाब, उसमें सबा गुल का नाम भी है और उसमें महानूर का नाम भी है, उसमें निगहत का, निगहत की जानिब से, हाँ वो खुश हो जाएंगी उन्होंने कहा था. और जीबीएन को भी डेडिकेट किया, शेरवानों को भी डेडिकेट किया, माहिन को भी डेडिकेट किया. तो ये गजल
1: रास्ते दिल से गुजरते
0: लाला की जानिब से.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब याकान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।